पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख बसया मन आए अंतर जोत परगासिया एक स्यों लिवलाए मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखया पाए गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए मेरे मन गुर शब्दी सुख होए

आप होवा मेहरबान, सच महल घर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुण सार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

प्राण तन धन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच स्यों मरै ना आवै जाए ना वे छोड़िया बिछड़े सब मह

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निहचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाइए निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरहै मन तन होवै शांत एक मन एक त्याईए मन की लाहे प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधिए दिन विसरहो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिये ए जिंद देख सुने हदूर साध कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सदगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहाव गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कटन हार बिन हर नाम न सुख होए कर डिठे विस्थार सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार तीर्थ वर्थ लक

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन नावन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखां की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखे

राजन रिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इशनान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान।

गुर जेवड़ अवर न को दूजा थाओ ना को सुजै गुर मेले सच सोए रहाओ। सगल पदार्थ तिस मिले सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर गुर सब मह रहया समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ से मथे ने चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ। गुर परमेश्वर सेविया पै भंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अग खंड जिन गुर सेविया अपना जमदूत न लागे डंड। गुर नाल तुल न लगई खोज डिठा ब्रह्मांड नाम निधान सतगुर दिया सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना सच छड़ जासी लख करोड़। सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौ

रहाउ जिचर वस्या कंत घर जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात पे यड़े शहु सेव तू साहुरड़े सुख वस गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगे दुख।

जवा कर सेवा करण कारण एक ओही जिनकिया आकार तिसहि त्यावहु मन मेरे सर्ब को आधार गुर के चरण मन माहे त्याए गुर के चरण मन महे त्याए छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिवलाए रहाओ दुख क्लेश ना पौ व्यापै गुर मंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे हौ तिन कै बलिहारने जे गुर की पैरी पाहे साध संगत मन बसै साच हर का नाउ सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार।

संसार। आप छोड़ सब होए रेणा जिस देव प्रभ निरंकार। जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवां।

वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

सभी मद सभै ते बाहर बे मोहताज बापा पिता हों जानो नाहीं तेरी कवन जुगता।

आए करते हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

पास सत गुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा।

सच्चा नाम सास गिरास न विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाई सच नाम गुणतास।

नानक गुरु शरणागति मरै नहावै जाए। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदिया आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा।

दर दरवेश रसीद बरकत तिनको अगली पढ़ दे रहन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़ दे रहन दरूद पूछना साजे पूछना टाहे।

ना जाए। नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए, साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी।

राग महला पहला। आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू आपे मोल अपार। साचो

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई है शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी है गुर मेली गुण चार साच मिले।

आहार संत सबा सुख उपजय गुरमुख नाम आधार खिन मह उपजय खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाण।

सत बोल आप तुलाए तुलसी पूरे पूरा तोल कथने कहन न छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच न पाई है बिन हर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मेले गुर करतारू श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिले पाइये रतन विचार मन बीजे गुर अपने पाइये सर्व प्यार।

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवे।

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला। मनमुख भुलै भुलाइय फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोए।

महर मलूक कहाइये राजा राव के खान चौधरी राव सदाइये जल बलिये अभिमान मनमुख नाम विसारिया ज्यों डव दधा कान मनमुख

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आन दिन भगत कर

पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चौं दिस जाए, जेता उड़ है दुख घणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरि आवला।

जांको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग गौण करे।

आए जियो। हों सतगुर विट हों कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी, आपे लैर लाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होया, जां कौ जोत धरी करतार जियो। आपे खसम निवाजया, जियो पिंड दे साजया। अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो। सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब किछ जानदा।

विटों कुर्बान जियो। हर इठै नित ध्यायंदा, मन चिंदी सो फल पाएंदा। सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा।

पहला पहले पहरे रहन कहे वन जा रिया मित्रा हुक्म पया गर्भास उर्द तप अंतर करे वन जा रिया मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाणे उर्द ध्यान लिव लागा।

करम धर्म नहीं पूजा। नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए। जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए। अंत काल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

खांडवर पांड हर सोभा होई इहुदान ना रलै रलाया होर मन मुख दाज जे रख दिखा लै सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबूला हर देव होदान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबूला फिर मिल तन वेल वदंदी हर जुग है जुगो जो

जिन्नी गुरमुख नाम त्याया, हर पुरख न कभी बिन सह जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जब हर हर नाम सोहंदी, हर राम राम मेरे बाबुला, फिर मिल तन वेल वदंदी।

गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निभ तेरे नाले संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई ना जाए मन चिंदे से ही फल पावे चरण कमल चित लाए जल थल पूर रहया बनवारी घट घट नजर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर दिन झूठ पसारे।

दुख मिटाया, चित्र गुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछु ना चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली।

सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निद पाए नाओ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के

जस नानक आप सुनियो हे संत। प्रेम ठगौरी पाए रिझाए, गोविंद मन मोहया जियो। संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो। हर कंठ लग सोहया, दोख सब जोहया। भगत लखियन कर बस पए, मन सब सुख बुठे। गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन बन जवा

आओ नानक पूर्व लिखिया कमावण अवर न करना जाए महला तीजा। होर कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नामै को थिर नहीं पढ़ पढ़ होए खुआर। पौड़ी हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर

तिस सब किश मिले एक ना दूर है पास तुद बाज हो थाओ को नाही जिस पास हो मंगी है मन वेखो को निरजास सब तुद नू साला हुंदे दर गुरमुखा नू परगास सलोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा माया मोह प्यार अंतर ब्रह्म न चीनई मन मूर्ख गावार दूजा पाए।

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लय हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम,

पूजियै बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

मुख उजले हर दरगाह पहंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै सो सिर दी जय डार। नानक जिस पिंजर मह बिरह।

करे जिस आपणी तिस कर्म प्राप्त होए। नानक करणे नानक कारण करते बस है, गुरमुख बूझै कोए महला तीजा। नानक

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम।

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अफसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर अमृत माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया। पुंडर केस कुसम ते तौले सपत पाताल की बाणी। लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी।

आई मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रभ वसै जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारिक दीन करहो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कम

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल गुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर नाम।

मिलिए प्रिया तुद भगवंता, मोहे रहन ना बिहावे, नींद ना आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो, हों कोली जियो कोल कुमहाई, तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ। भाग होवा गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर्म है पाया, सेव करी पल चसा न बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरे बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारिया जियो, फिर घिर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया।

सुहाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बिनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सागुणवंती सावड भागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई परधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए।

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथा बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौ जीवा जियो दुख पंजन निधान अमोले निरपहौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपहौ मन सिमरत ठंडा थीवा जियो सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपाला।

तुम दाते तुम पुरख बिधाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही ते बरसावे अवसर करो हमारा पूरा जियो।

गुरमत बिनसी कबुद्ध अभागी, सच घर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे कूरा जियो, माज महला पंजवां।

खहारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारिक तीखीर अगावै ज्यों निर धन धन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियारै दीपक परगासा भरता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे।

साहिब भावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है।

दर्शन पेखा से कर भले जिनि हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौं बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल।

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी

सगल मनोरथ पूर्ण होए, कदे न होए दुखाला जियो। माज महला पंजवां, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दै दिस वरसाया। शांत पई बुझी सब तृष्णा।

अंतर बाहर हर प्रभ साथे। पै पौ परम खोया गुरपूरै, देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊच अपारा, नौनिद नाम भरे पंडारा। आद अंत मध प्रभ।

सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी, बहां पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

मनमुख पाप पजावणिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पुजावणिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्शहिंदे वडियाई।

मिलै ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक सिउ लिव लागी।

इस गुफा मह अखोट भंडारा तिस विच वसै हर अलख अपारा आपे गुप्त प्रगट है आपे गुर शब्दी आप वन्या बणिया हों वारी जीओ वारी अमृत नाम मन बसा बणिया अमृत नाम महारस मीठा गुरमती अमृत पिया बणिया राव हों मैं मार बजर कपाट खुलाया नाम अमोलक।

अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया कथो कथिया शब्द सुहावै गुरमति मन सचो पावै सचो सच रव है दिन राती इह मन सच रंगावणिया।

आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरणा खाणी बाणी सर्ब निवासी सबना कै मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सियापै जिन पिया से ही तृप्ता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर सहज

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन विद मिले।

गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया, जिस कौ तू प्रभ

वही लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब वियोग नानक को प्रभरा।

राती गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती तू आपे आप सुजान है वट पुरख बिडाती जो मन चित तुद ध्याए दे मेरे सचिया बल बल हो तिन जाती।

विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरों मल मल धोवे अंधा फूल पया जम जाले वस्त पराई अपनी कर जाने होमे विच दुख काले नानक गुरमुख होमे टुटे ता हर हर नाम त्यावे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पवड़ी

पवड़ी इकना मरण ना चित आस कनेरिया मर मर जमह नित किसै ना केरिया आपन डै मन चित कहन चंगेरिया।

पहला ना सूर सस मंडलो ना सपद दीप न जलो अन्न पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला।

जिसनो नदर करे तिस देव है, नानक गुरमुख रतन सो लेव पौड़ी। भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया, करता आप अफुल है ना।

समरथ है कहो नानक बिचार कारण करते वस है जिन कल रखी धार पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसया सच्चा खसम कलान कमल विगसया खसम हूं पूरा पाए।

दहदिस ताव है कर्म लिखयास नाम संजोगी गोयल थाट काम क्रोध फूटे बिखमाट बिन वखर सुनो करहाट गुर मिल खो।

भगत करहै मूर्ख आप जनावहै, नच नच टपहै बहुत दुख पावहै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जोनी पाए।

भागी सतगुर मिलै वडभागी सतगुर मिलै मुख अमृत पाईऐ होमै दुविधा बिनस जाए सहजे सुख समाईऐ वडभागी सतगुर मिलै मुख अमृत पाईऐ होमै दुविधा बिनस जाए सहजे सुख समाईऐ सब आपे आप वरतदा आपे नाए लाईऐ मनमुख गर्भ न पायो अज्ञान इयाने सतगुर सेवा ना करहै फिर पछताणे।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुना।

त्रिपद गुर साचा गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आ गए। जन नानक हर रस तृप्त।

हर नाम मन चित नित त्यावहो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए।

त्यों मनमुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासयो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तहरी, तिन जम जोहन लागे।

पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी मिल

इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन हा

एक महल ने मानो एक महल तू आपे आपे एक महल गरीबानो एक महल तू पंडित बकता एक महल खल होता एक महल तू सब किश ग्राहज एक महल।

लाथी भूख तृष्ण सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरै धरयो, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए रहे।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ

खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द न सबर।

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुना।

पत पाए। गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जाने आ, गुरमुख भगत विरले मन माने आ, हों हों करत नहीं।

हों मैं निवरह गुर शब्द विचारे, चंचल मत त्यागे पंच संहारे। अंतर साच सहज कर आवहे, राजन जान परम गत पावहे। सच करनी गुर परम चुकावे, निर्भौ कै कर ताड़ी लावे। हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावे।

सी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना ना मोह भूले जम का दुख सहना मैं तार नाम ज्यों राखो रहना।

हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया। साच महल गुर अलख लखाया, निहचल महल नहीं छाया माया। साच संतोखे भरम चुकाया, जिन कै मन वसिया सच सोई। तिन की संगत गुरमुख होई, नानक सच नाम मल खोई।

गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए। प्रभ हुए दयाल नानक जन करिए। सोलह अष्टपदिया ग्वारेरी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यों गाई को गोयली राख है कर सारा। अहंस पालह राख ले आत्म सुख तारा। इत उतरा खो दीन दयाला, तो शरणागत नदर निहाला। रहा जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा। तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा। किरत पया अध ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा। बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अंधियारा। जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा। गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा। निज घर महल अपार को अपरंपर सोई। बिन शब्द थिर को नहीं बूझे सुख होई। क्या ले आया ले जाए क्या पास है जम जाला। डोल बद्दा कस जेवरी आकाश पाताला।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द न

रोता। आवत कौ जाता कहे जाते कौ आया। पर की कौ अपनी कहे अपनों नहीं पाया। मीठे

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझहो सदा सुख होई।

करै गुर कै शब्द पंच संघारै आप तरै सगले कुल तारै माया मोह नत बाजी पाई मनमुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते भेख करै भेख धारी अंतर तिशना फिरै अहंकारी आप न चीनै बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत भरम पुलहाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रत्ते सदा बैरागी गृही अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेव है से बडभागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा।

आए जम डंड सह है सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई हों मैं मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई।

कह लई हर आपे कृपा करे नाम देवै गुरमुख रतन को विरला लेवै नानक गुण गावै हर अलख अपेवै एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते जो मुह फेरे तेरे मुख बुरे दिसन अन दिन बद्धे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सतसंगत में लाए प्रभ हर हृदय हर गुण सार रहाओ से भगत हर पावंदे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन।

मन कर हला सतगुर पुरख ते आए रहाओ, मन कर हला विचारिया हर राम नाम ते आए, जिथे लेखा मंगिए हर आपे लै छाए, मन कर हला अत

गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया सतसंगत सतगुर पाल। सतसंगत लग हर ध्याईए हर हर चले तेरे नाल। मन करहला बड़ भागिया हर एक

छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन कर हला बट भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़

पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना। जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना। सहज सुहेला

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाही किछताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा, तब ते दुख डंड अरखेदा, जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावे माया अर्थी, नह तृप्तावे नह तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर मह दीपक जलियो।

गए। जास जपत बस आव है पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगह सिज।

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहर।

लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पश पंखी अनक जोन जिंदू सगल पसार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहा संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहा सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

हर संग रखवाला, पूर्ण पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन सर्वस

मंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो।

जियो गुरपुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री धर क्यों मिलहै तुझे उडीनियां कर कर है सेवा शीश चरणी।

आप रहया, आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। श्लोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक एको।

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाय।

गोविंद भजहो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यो या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ दे कल युग मह पाया फिर या अवसर चरै ना हाथा नाम जपहो।

साध संग पतियाना दुख सुख वाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निर्लेपा पूर्ण घट घट पुरख बिसेखा वा रसमह वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। श्लोक

नानक उन संग मोहे उधार सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ नाम बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ

प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभ कै सिमरन हुए सो पहला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला।

सिम दसना प्रभु कौ सिमरह से धनवंते प्रभु कौ सिमरह से पतवंते प्रभु कौ सिमरह से जन परवान प्रभु कौ सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु कौ सिमरह से बेमुहताजे प्रभु कौ सिमरह से सर्व के राजे प्रभु कौ सिमरह से सुखवासी प्रभु

अष्टपदी। जह मात पिता सुत मीत ना पहाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल होवे अत पहारी, हर को नाम खिनमाहे उदाहरी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरुमुख नाम जपहो मन मेरे, नानक पावहो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तिख

साध संग दुर्मत मल हिरया, सगल उदम मह उदम भला, हर का नाम जपहो जी सदा, सगल बानी मह अमृत बानी, हर को जस

अंधकूप मह पतत बिकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मांस जात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर पेख अंतर मल।

बसह सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पडंबर हंडावहें।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रवता कह जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास।

साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेट त होत निहाल साध कै संग कलूख तहरै साध कै संग नरक पर हरै।

पदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कौ एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राखे को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

एक है आप नहीं कछ परम सहस्यानप लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेख पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेड़ संग राम गुण रवे पार ब्रह्म के दरगाह गवे सुनकर वचन करन आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखयो जाका मंत्र अमृत दृष्ट।

अष्टपदी। जब अकार एहु कछ न दृष्टेता, पापुन तब कहते होता। जब तहरी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रव केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक है हरागमा पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रव सहज सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै, तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पू

प्रधान ते जिह जान्यो परपंच कुसंबास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत विचार स्वाद मोह रस देओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना विचार विवेक पाओ भगत भगवान।

अतुल क्यों तुलिया सेवड भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की रीस है होर

मुख खोले मन खोटे दिए विछोड़े। श्लोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा।

कूड़ न गड्डई मन वेखोह को निरजास। कूड़यार कूड़यारी जाए रले सचियार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां।

जह अबोल तह मन न रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लख न कोई, अलह लहो तो क्या कहो, कहो ताको उपकार, बटक बीज महराव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार। अलह लहंता अलह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदे पायो अभंग अशेद।

तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक अनंत करहे हर पूजा।

देख बहु करै, दुख बिखिया सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुविधा छोड़ नाम निस्तरै, सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोविंद, आपे करे आपे बख्शिंद।

हर हर हार कंठ ले पहरै दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरै इन विद चित तहे मधुसूदन कर मुंदरी पहरै परमेश्वर पट ले तीरज धड़ी बंधावै कामण श्री रंग सुरमा देई।

जीवत दिसै तिस सर पर मरना मुआ होवे तिस निहचल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे हर हर ना।

किस आख सुनाइए। जे कहना सो प्रभ जी पास, सब किश कीता तेरा वरतै, सदा सदा तेरी आस। जे देह वड्याई तां तेरी वड्याई, इत उत तुझ है ध्यान।

सच अमली आसा महला पंजवा उद्दम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपे जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया पाए पर है सतगुरु कै

आढ़ आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

अंधारा, अंदर महल अनेक है, जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी, फिर होए ना फेरा, पारखियां वथ संभाल लई।

क्रोध अब महान शब्द मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर भेटिया सफल जन्म हम।

हरि राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहज हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चा शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़।

शिंगार हबरस अर्पिय जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए तह साध संग ना डरपिय कर कीरत गोविंद गुणिए सगल पराशत।

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कैर दै बसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध।

वे पापी सदा फिरह अपराधी मुखों अपर सकहाव है सदा सदा फिरह अभिमानी सगल कुटुंब डुबाव है।

आगम निर्गम ज्योतिक जान है बहु बहु व्याकरणा तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तऊ मरना राजभोग अर शतर सिंह।

भिष्ट छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद न बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम।

कहे कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोई आसा। जो मैं रूप किए बहुत तेरे अब हुन

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझै कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। रहा जल तरंग अरफेन बुदबुदा, जल ते भिन्न न होई। इहो प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथ्या परम अर सुपन मनोरथ, सत

भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच देख काम लुभद राता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ देख फल मीर।

ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਹਿ ਨ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ।